अपना परिसर भूल जाए सब मारो बकुल दखरी मस्त गई जम के रोक बंग बकुल मजम बबू कर जाए कर मर पैर ना तो गुबरी जुर बैल।

अपने जो संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिखे मामम अगर दुखा दर समाज